जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि हर सोनी भाई बैठ रहे मैं तो हमें ठीक है हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है कितना है क्या है कैसा हुआ है तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे संग किसके साथ में रहना है जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी दैट इज कॉल्ड सत संग The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sitting like this, say, do the aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं वो तो बैठो आगे और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे तो फिर वो इधर करे फिर वो ऐसा करता तो सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all, so this is Sat. Sat kya hai? Wo Sat kahan hai? Wo Sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai. Janwaron ka bhi hai. Wo bhi aata hai. तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन सो टू ऑल पीपल दैट

everywhere. They tell to them their mother, yes, mother, but where make the child? Yes, in my, like this, even that. Then it is said, yes, this is very good. So child is going front, and mother is behind. Taki, the children can be with mother very nice and that, and not going out. Then what happens is something. So sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo hi satya kahal ja gaya hai. To sat sang. Aur wo sang kiske hai? Ki sabhi ke ek saath, sabhi ko kisar, but other one, we will go this and we're going to go sit like that. So when we come, you should come first already, where you are sitting. So, very nice. Satsang. So, satsang ke baare mein ek bhajan lagao. Ek bhajan lagao satsang ka. Satsangiyon ki. Satsangiyon ki san, hai na bhajan apna? Baap ji ka hai na? Haath lagao, bada baap ji ka, Madhavanand ji ka hai bhai. Madhavanand ji bhagwan, saare vishw mein padare huye hai, wo bhi. और माँ प्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए वहाँ नहीं तो वो मेरे तो मेरा देश है ना यहाँ पर मेरा देश बहुत बड़ा है यू डोंट नो सो मैनी कंट्रीज है मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी कंट्रीज है बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द Christians or dusre bhi jo hai na they come inside and they talk the Indians all like this so don't go home no school jana dena kuch karna nahi tha only those who are learning very people so they were like doctors and this or this otherwise all people was अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big, big, big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many, many, many, many languages here, Bharat mein. Lekin, unhone sab karke Hindu. Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka, kisko kehte hai, batao? Haan. Hai? नहीं संस्कृत में तो है हाँ सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी
what was said.

0: लगता है उनको, और उसके आगे भगवान ही है बस, और किसी के ऊपर है ही नहीं। और दूसरे कोई भी है, क्रिश्चियंस है, वो है, हिंदुओं है, उनके सबका है। तो वो जितने मुसलमान हैं, तो पहले हमारे हिंदू थे, सब हिंदू हैं, लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस। सो देयरफॉर वी नो दैट एवरीथिंग दैट इन माय कंट्री एंड वेट माय कंट्री दैट व्हेन आई गो टू द एयरपोर्ट एंड देन इज एवरीवेयर या सब आई एम कमिंग ऑलवेज विद एरोप्लेन्स यस एंड आई सी देयर फ्रॉम दैट आई सी इट अवर इंडिया हमारा इधर से so that all my disciples from other countries they have all understood everything and they practice here all the times and coming don't worry they are not but we want to come to here the swami ji have maheshwaranand gaye to main maheshwaranand ko main kya karu main to kuch nahi karta tha ab to lekin wo hi kar rahe hai mere liye ha pehle maine karaya But he said, I told them, but he didn't know. I have done, and what do you, what will do? And so my disciples, that everyone in the whole countries, whole world countries, up they are come and made. So in government, India, we say that Maheshwaranand is, he has called the Hindus, और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो आप उसको बोला आपका लेकिन बोलो कैसा क्या करो ये बात है नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहो गए वो तो आगे पीछे में But now the many people have Hamare disciples here all, they come, they are not coming here for working here. They are coming for Mahaprabhu ji ke, or Mahaprabhu ji ke, Mahaprabhu ji Devpuri ji ka. Wo jo hai, that is the first. And so Madhavanand ji, he went here from his house. From his house he went out. It was only like this. And he brought Mahaprabhuji. Mahaprabhuji jo hai, he came to my village, to my mother. And here my was staying in my house. And there was one very nice person in Rupavas mein. Aur wo thoda padak thik nahi tha, to dheere dheere chalte the. But he was no very great, standing very great. वो महाप्रभु जी के पास आए थे तो वहाँ बिठा दिया कि बैठो और पढ़ाओ तो बाप जी के वो नहीं थे इतना छोटा से ही थे बाप जी महाप्रभु जी एंड वो आते थे देन घर पर आते थे फिर वो आते वो बैठते थे तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास रूपावास में रखा है रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे अभी भी है अच्छा ही है लेकिन वो थोड़ा अब डब चबड़ गया हो गया यूँ से भी जगह हैं हाँ लेकिन वो नहीं होगा वो हो जाएगा वो अच्छा ही होगा वो भी अच्छा होगा और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं तो रूपावास कंट्री Is the Jaja wherever I am in the other countries, very many countries. So where are you going? To Rupavas. Yes, my name is Rupavas in the whole world. Athara gaon wale Rupa hai, wo nahi jaane. Lekin wo mera Rupavas, Gujarat, wo bagar se bhi ho, lekin hamare Rupavas. To wo theek tak. जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ, रूपावास, और वो चल रहा है। अब वो छोटे मोटे लोग हैं, उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है। अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे, कि मैं मनुष्य हूँ बस। अब हम मनुष्य है, तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है। जाति हमारी एक भारत की है, और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप लोग मेघवाल हो, गरग से हो, जो भी हैं, सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का, तब देख लेना। उसकी आगे में लगा देंगे, ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं, ए प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो, हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी का इतना बहुत गाँव देश है, और देश में गाँव बहुत बढ़िया है, और पहाड़ों के ऊपर में भी, नीचे सभी जगह है, और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है। ओके, लेकिन आप देखेंगे, इनको देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए, एक बार आए, दो गए, फिर वापस आए, और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो, श्री दीप नारायण भगवान की जय।
1: श्री मारवानंद जी सद

And they said, no, you are killing but one day. फिर कहते मैं कहाँ जाऊँ मारी वो कटेगी ओ यस दैट्स व्हाई लाइफ बिकॉज वी आर द ह्यूमन वी शुड नो दैट दैट्स इट अदर्स दे नो दे हैव लर्न गॉड हैज गिवन एग्जैक्टली सो दिस वन सीड गोज इन अर्थ स्प्राउट्स इट्स कम्स अप फ्लावर्स एंड Then now very nice leaves, it will fall down, new will come again. The same thing like humans and this, everything. But more is to there. Patta tuta del se le gai pavan udai. Ab ke bichare kab mila. Pata kahan milega, kahan jayega. आज हम हैं सभी साथ में वी आर ऑल हियर एंड वी विल बी टू अवर होप वी होप बट इट कैन बी दैट वन पर्सन इन अ नाइट वी विल बी नॉट एनी मोर देयर जीव पक्षी जाता है वो पक्षी पक्षी रे कि नहीं हरि ओम प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ट्राई टू कैच हॉरिजेंट एंड हाउ टू गेट द हॉरिजेंट टुमारो आई विल टेल यू हरि ओम दीप नारायण भगवान की नाउ द बॉयज कम दे आर कमिंग द स्टूडेंट्स Oh,

0: Come a little back. Thoda. Mere piche aao. Yeah, mere paas mein. Ab dono ek saath saath reho, beta. Aur mask nikal do. Side karo. Slow. Thank you.
1: Shri Deep Nan Bhagwan ki jai. Devi Shramadev ki jai.
0: Thoda dur hai.
2: Hindam Samrat Satguru Swami Madhvanji Bhagwan ki jai.
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वर नंदी पुरी जी गुरुदेव की जय।
2: विदाउट गुरु वी कैन नॉट नो ब्रह्मा विष्णु महेश। एक्चुअली गुरु इज नॉट ओनली ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु इज ऑल्सो पार ब्रह्म परमेश्वर। ओम।

0: पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिभज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी महादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

श्री अलखपुरीशा महादेव की जय। स्वयंभू बाबा श्री देवपुरी जी महादेव की जय। विश्व वंदनीय भगवान श्री दीपनारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी जी श्री माधवानंदपुरी सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी जी श्री महेश्वरानंदपुरी सद्गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं की जय। श्री रुद्राष्टकम्

रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं।

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम शिवार्पणमस्तु। बोलिए भगवान श्री अलख पुरुषा महादेव की जय। देव पुरुषा महादेव की जय। दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। निर्वाण षटकम्

बोलिए भगवान श्री अलखपुरीशा महादेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवपुरीशा महादेव की जय, श्री माधवानंद भगवान की जय, विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य।

0: अलक पुरुषा महादेव की जय,
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान की
1: जय, जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद ब्रज गुरुदेव भगवान की
1: जय।

0: की जय।
1: श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की
0: जय।
1: आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी भगवान की
0: जय।
1: श्री काशी विश्वनाथ भगवान की
0: जय।
1: श्री गजानन जी भगवान की
0: जय।
1: सब ऋषि मुनि महात्मन की
0: जय। बोलिए भगवान श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: एक और
0: वेद सार शिवस्तवः

शिव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो न गम्यहम्।

0: आत्मकं हर चराचर वेश्वरूपिं। इति श्रीमत्स्य शंकराचार्य विरचितं वेदसार शिवस्तवः शिवार्पणमस्तु।
1: दीपनारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। संभव

बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री मंगला जी महाराज की जय, विश्व गुरु महामंडल स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: परिवार
1: सपरिवार
0: पृथक पृथक स्नान दुग्ध मिश्रित जलधारा भी अद्य षडंग रुद्रा अभिषेक कर्मणि। आपकी कोई और मनोकामनाएं हैं तो आप मन में स्मरण करके अद्य एक ब्राह्मण द्वारा षडंग अभिषेकं अहं करिष्ये तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये सोमान गुस्वरणं ग्रहणो हि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं च गौस्तिजः सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ जोड़े भगवान सूर्यनारायण भगवान का ध्यान करें। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतमृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ओम भूर्वस्वः सवित्रे श्री सूर्यनारायणाय नमः भास्कराय नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान रामचंद्र जी सपरिवार का ध्यान करें। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजम मार्द तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वा नरयूत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। ओम पूर्वस्वा श्री रामचंद्र सपरिवार देवताभ्यो नमः। अंजनी पुत्राय नमः पवन पुत्राय नमः। गर्भोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। सभी लोग हाथ जोड़े गुरु जी का ध्यान करें, स्वामी जी का ध्यान करें आप लोग। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्वस्मा श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु परमेष्ठिने नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। दीप पूजनम् या देवि सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओं पूर्वस्मः घृतदीपाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। शिव परिवार ध्यानम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा गणपतिं पूजये। हरि ओं गणानन्द्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वतोम जानकरवतमात्मजा सकृपतं बाबूं पूर्वस्मा सिद्धिबुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अम्बे अम्बिकेम बालिके नमानयति कश्चन सा सत्यशुभगः सुभद्रेकाङ्कां बीलवासिनीं। ओम पूर्वस्वा भगवती नमः राजराजेश्वरी पार्वतीदेवी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यं समुद्रादित वा पुरी घात श्येनस्य भक्षारणस्य बाहुभस्त्यं महिजातन्ते गर्भन्न। ओम पूर्वस्वः कार्तिक मुख षण्मुखाय नमः। सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जय के च पृथिवी मनो जय अंतरिक्षे जय दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम पूर्वस्मः सर्पाय नमः। नागराज देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आशुः शिशानो भृगभो न भीमो गणागणः क्षोभणश्चरे गणीनाम्ब संक्रंदनो निमिक एकवीरः शतघोसेना अजयत्सागमिन्द्रः। ओम पूर्वस्मः नन्दीश्वराय नमः। सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते बिल्वदलपत्राणि गृहीत्वा हरिः ओम।

0: जब तक श्रृंगार कर रहा हूँ तब तक कोई बढ़िया सा स्तोत्र गाओ।
1: हाँ जी समझ।
0: I need more water. It's enough.

श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवतारष्टुप्छन्दः सीताशक्ति श्रीमान् हनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रपाठजपे विनियोगः। ॐ ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशतनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोपसानं नवकमलधरस्परदिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम्। ॐ चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापादकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाण पाणिन्नक्तञ्जरान्तकं त्वलीलया जगत्प्रादुर्माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षात् प्रणिप्राज्ञ पापग्नेव सर्वकामदां शिरो मे राघव पादु पालन्दशरतात्मज कौशल्येयो दृशो पादु विश्वामित्रप्रश्रुति ग्राणं पादु मुखत्रातामुखं सौमित्रिवत्सल जिह्वां विद्यानिधि पादु कण्ठं व्रतबन्धित स्कन्दौ दिव्यायुध पादौ भुजौ भग्ने शिकारमुख करौ सीतापति पादु हृदयञ्जामदग्निजित् मद्यं पादु क्रद्धुंसीनाभीं जाम्बवदाश्रय सुग्रीवेशकटिपादु शक्तिनी हनुमत्प्रभु ऊरूरगुत्तम पादु रक्षाकुलविनाशकृत् जानुन्नीसेत्कृत्पादु जङ्गेदश मुखान्तक पादौ विभीषण श्रीद पादु रामो किलम्बभू एतां रामलोपेतां रक्षा यः स्मृति पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलभ्योम चारण षद्मचारण न दृष्टमपि सक्तास्ते रक्षितं रामनामपि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्ना विरक्षितं यकण्ठेदार्यतस्य कस्ता सर्वसिद्धयः वज्रवञ्जरनामे दय्यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताग्नि सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्ट्वा निता स्वप्ने रामरक्षामिमां हर यथा लिखित्वान् प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिक आरामकपिलवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां रामश्रीमा सनप्रभु तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलौ कुण्डैकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मदां रक्षाकुलनिहन्तारौ त्रागीतान्नो रघुत्तमौ आत्तसज्जतनुसा स्पृशा वक्षया सुगनसङ्गसङ्गिनौ रक्षणां रामलक्ष्मणा वक्रतापति सदैव गच्छतां तन्नद्धा कवची खड्गी चाभमण्डरो युवा गच्छन्मनोरथानश्च रामपादु लक्ष्मणः रामोदाश्रतिशूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौसल्ययो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि च पन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं यप्राप्नोति संशयः रामं दूर्वादृश्यामं पद्माक्षं पीतवासं स्तुवन्ति नाम हृदिव्यनते संसारिणौ नराः काकुत्स्थ रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम्।

0: अरार्तिक्यम नरम पुरेते गेन लॉक्ड इटसेल्फ चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो जात श्रोत्राद्वयश
1: भोग लगा दी।
0: हाँ लगा रहा था। दिखने ना हरिओं मनाभ्यासीदंत्रिशूं शेषोद्योः समर्थताभ्यामूमृदशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नान्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं इच्छां देहि च पार्वती
1: ओम नैवेद्य मध्यपानी सुनोयामि मित्रा भोजन मुखवासारते भीड़ाभुगिम तांबूलम समर्पयामि ईश्वरं नमस्कारते त्रिपदक्षिणां सुनोयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोकिनी व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम मा जाहा फलि निर्जा फला पुक्पा जाश पुक्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्हसः ऋतुलोदल पत्राणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अथारार्तिक्यम्
0: वेयर्स द लाइट
1: अथा
0: ओके फाउंड
1: परंपरा वाली आरती बोलनी सुन।
0: हाँ जी हाँ जी जो आप सुबह गाते हो
1: जी। ओम गो हवि हे प्रजन नम मैं अस्तु दशा वीर गो सर्वा गाण कुसुस्ताय आत्मा धन प्रजा सनि बसु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुलाम में करोत्वन्नम पयोरे यदुवस्मा सुदत्त अस्तु श्री मंगलानि भवन्तु।

0: हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय, हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंद गुरुजी महाराज की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवतार गुरुजी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, मात पिता सद्गुरुदेव की जय, नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि यस्यां दुर्दक्षिणायां पते पते मन्त्रहीनं गृहहीनं भक्तेन उदरेश्वराय यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्तु मे, आवाहनं न जानामि न जानामि त्वार्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, मृत्युञ्जय महादेवत्राय मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भवन्दनैः भगवते सांबदा शिवाय नमः, स्फटिक महेश्वर शिव परिवार देवताभ्यो नमः, प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलमादाय ओम अद्य पूर्वचार देवंग्रह गुण गण विशेषायाम शिव पंडित वादो यजमान आदो अच्युत गोत्रोत्पन्नस्य परम पूज्य स्वामी वर्यः सर्वेषां भक्तजनानां अद्य दिने षडंग रुद्रा अभिषेक स्फटिक महेश्वर देवताः प्रियता नमः। तत्सत् सांब शिवार्पणमस्तु। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। स्वामी जी वो न्यास के लिए पहले वो स्तोत्र चालू कर दिए थे। ओम मनो ज्योति जगदामास्य बृहस्पति रजनिम मंदानो परिष्टं जद्दिंगोतिनाद विश्वे देवासी मा तयन दामो प्रतिष्ठा हृदयाय नमः। अभोति गणेश पिता जनानां प्रतिविन्वाय मुखा जब्बा मुखा जम्मा सब्बा जब्बाय ब्रह्मचियाना प्रभान वदराम चद्रसे स्वाहा मुर्दानंदी प्रति प्रतिया भीष्मा नरमृदाज मृत्युंजय महादेवत्राय मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भवन्दनैः भगवते सांबदा शिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि।
1: ब्रह्मणे नमः नमो नारायण
2: प्रणाम
1: स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महेन्महेशा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुदेव भगवान् ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो। सागरपुर जी महाराज।

0: भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kya mata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare hain. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत संग। The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sit and like this, do the aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे तो फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all, so this is Sat. Sat kya hai? Wo Sat kahan hai? Wo Sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai, janwaron ka bhi hai, wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माय लाइक दिस इवन दैट Then it is said, yes, this is very good. So, child is going front and mother is behind it. Taki, the children can be with mother very nice and that, and not going out. Then what happens is something. So, sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo satya kahal ja gaya hai. तो सत संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किस बक बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो सिट लाइक दैट, सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग, सो वेरी नाइस सत संग। तो सत संग के बारे में एक भजन लगाओ। एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाथ लगाओ तब बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो मेरे, तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वॉटर एंड इन वॉटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हु आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big. I have not seen everything. India itna lamba chauda hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many language hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka kisko kehte hain batao? Ha. Hai? नहीं संस्कृत में तो है हाँ सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या कि इस साल में ऐसे आ गए इन लोगों ने मुसलमान आ गए खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसके ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and where my country there, when I go to the airport, and then is everywhere. Yeah. So, I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not but we want to come to here. Swamiji have Maheshwaranand. तो मैं महेश्वरानंद को मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो, लेकिन वो ही कर रहे हैं मेरे लिए. हाँ, पहले मैंने कराया, बट इस एंड आई टॉल दे बट इट नो आई हैव डन एंड वाट डू यू वाट विल डू. एंड सो माई डिसाइपल्स दैट एवरी बर्न इन द होल कंट्रीज, होल वर्ल्ड कंट्रीज की, अब दे आर कम एंड मेड. सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है, वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है, हुआ है, तो वैसे ही करना चाहिए. और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इनका हिंदू करो. मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं, आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोला आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या करो, ये बात है. नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगे तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में. बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट. एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट. इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर. And here my was staying in my house, and there was one very nice person in Rupavas mein, aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the, but he was no very great standing very great. Wo Mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao. To baap ji ke wo nahi the itna छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी. एंड वो आते थे देन घर पे आते थे फिर वो आते वो बैठते थे. तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है. रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चब लगा हो गया वहाँ से भी जगह हैं. हाँ, लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा. और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मेनी कंट्रीज. तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस, माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड. 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास. तो वो ठेठ तक जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है. अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें. तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है. अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है कि मैं मनुष्य हूँ. बस अब हम मनुष्य है. तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है. जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना. हाँ ठीक है, आप मेघवाड़ हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का. तब देख लेना, उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं? प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं? ये प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो। हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का, प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मगा या इतना बड़ा है उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है। ओके लेकिन आप देखेंगे इनको देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है। प्रेम की बोलो, श्री दीप नारायण भगवान की जय।
1: श्री मारवानंद जी सदगुरु।

your kids, oh, you are silly. So there is some, your contribution also goes, credit also goes. That's why it is saying that. So Danu have got a lot of demons, and Viprachit, and from Viprachit, Damba came. So Damba, Viprachit went to meditation, and he did not have son, and the Brahma gave blessings. And similarly, Damba also went to meditate, and when he meditated, then he find out the Shankhachur. And Shankhachur is one of the popular demons, and he has got the great story, and because of him, that the whole world was terrifying. His name is Shankhachur. And Shankhachur is one of the popular demons. So it's very hard to remember, isn't it? Brahma and Marichi and Kashyap and Diti Danu, and after that, Viprachit and Damba, and after Damba, Shankhachur. And this story about the Shankhachur. So you might easily remember, isn't it? So, उस समय में क्या था कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था तो सबसे पहले इस संसार को शुरुआत करने के लिए शुरुआत से ही ये कथा वाचन होता है शिव पुराण का ये रुद्र संहिता का कथा आप कहीं भी है श्रवण कीजिए कि इसमें अनन्य ज्ञान है अनन्य भक्ति है तो हमको कहीं भी जो पढ़ने को तो मिलेगा लेकिन ये अमृत वाणी आपको सिर्फ कान को शुद्ध नहीं करेगा शरीर और कर्म को समेत शुद्ध करता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र मध्य में एक में मरीचि नाम का एक पुत्र था जो मन से उत्पन्न हुआ तो मरीचि के साथ से मरीचि के मार्फत ऋषि कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप ऋषि बहुत धार्मिक थे और कश्यप ऋषि के 13 श्रीमती थे उनके पत्नी 13 थे क्योंकि दक्ष प्रजापति ने 13 बेटी के साथ में उनको शादी करा दिया और 13 में दीति और दनु प्रमुख श्रीमती थे और दनु के साथ से दानव उत्पन्न हो गए दीति के गोद से देवता उत्पन्न हो गए इसीलिए क्या है कि देवता और दानव का पिता एक ही है कश्यप माता अलग अलग है तो वही दीति जो थी उसके वजह से सारा देवता उत्पन्न हो गए और दानव के लिए जो दनु के संतान दानव के रूप में आ गए और उसमें भी विप्रचित नाम का बड़ा भयंकर दानव था उसके पुत्र दम्ब हो गए और दम्ब को भी संतान नहीं था इसलिए वो क्या है कि आराधना में योग में तप में लगा तप करते करते करते करते ब्रह्मा जी को आशीर्वाद मिला उसको कि संसार में कोई भी देवता उसको परास्त नहीं कर पाए नहीं कर सके ऐसा बेटा चाहिए उसने बहुत भयंकर तप किया घोर तप किया तो वो तप करने के बाद में उसको शंखचूड़ नाम का एक बेटा मिला तो वही बेटा के आधारित एक बहुत लंबा बहुत पुराना बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे अमृत वाणी कथा है जो कथा आज से हजारों साल पहले सत्ययुग में भी सुनाई जाता था अभी भी हम भाग्यशाली है कि इस तीर्थ स्थान में बैठ के सुनने को मौका मिल रहा है तो उसमें सिर्फ शंखपुर का कहानी नहीं आता है अभी भारतवर्ष में वैज्ञानिक लोग ने क्या क्या अन्वेषण किया आविष्कार किया तो उसमें ये भी प्रमाणित हो चुका है तो इसीलिए ये प्रमाणित हो चुका प्रमाणित विषय है तो वही चीज अभी आगे बढ़ता है कि शंखचूर अपने जीवन को कैसा आगे लेकर जाता है वो भयंकर दानव कैसा संसार को त्राहिमाम त्राहिमाम बनाता है तो वही चीज अब विस्तार में कहते हैं आप सुनते रहिए जय बोले श्री भोले बाबा की विष्णु भगवान की जय सो दम्ब डिड नॉट हैव एनी सन सो दम्ब वाज द सन ऑफ विप्रचित एंड दम्ब डिमोन And he went to the jungle and he meditated for a longer times. And hundreds of years he meditated. After meditate, that Brahma is pleased. And after Brahma pleasing, so he came and then blessed him. And he told, well, I need a brave son, very brave son, who cannot defeat it by any god and goddess or any human beings or anyone. So I need that much strong son and brave son who can continue the existence And the identity of Danav, he wanted. And he asked that. And Shankhachur, he born Shankhachur because of the blessing, Brahma's blessing. Brahma says, Tathastu. Okay, whatever you want, you will get it. The Brahma is very kind, isn't it? When you meditate. So ancient time, the old story says that whenever any great demons, great god, they comes, first they go to meditation. The meditation is acquiring the divine power. Without divining the power, we will be normal person.
So when you get the divine power, you will be amazing and blessed. You can perform in a great way. So in the same way, there is also the tradition and

karma. Without destroying the strength of the truth and the confidence and the spirituality of wife, I cannot do anything. And when Vishnu told that, then everyone, the goddess, went to the Mahadeva. Oh, the Mahadeva, please help us. Vishnu going to help to destroy the Patni Brata Dharma, Pati Brata Dharma, both of them. So Vishnu accept and Shiva also accept. They're ready. And Shiva invited in the battlefield to the Jalandhar. And Jalandhar went to fight. And they are starting fighting. And started fighting. And hundreds and thousands years that passed away. So, but Jalandhar was so brave. Still, he did not defeat it. So, ye Puran hai ki Shiv Puran mein jo aata hai ki Tulasi Mata Saligram mein kaisa pyari ho gayi. तो वही है कि वो शंखचूर की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया. उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया. श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए. पाषाण विष्णु क्या है कि वो शालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी. वैकुंठ में चली गई. इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं. ये शिव पुराण का कहानी है. शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये उन तुलसी ने जो शरीर देह हत्या किया था वो गंडकी था. गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है. शालिग्राम वहीं मिलता है. दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह. तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं. कोई बनी बनाओ बात नहीं. कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्चित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है. तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में. तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं. तो स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसी कथा है. जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा. वो क्या करता था, संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था. ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था, वो तांडव करता था उसमें. तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए, बहुत दुखी बन गए. और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया. और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है. जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा. इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ शिव जी ने बताया. और सारे देवगण विष्णु के पास में गए. विष्णु ने हाँ कह दिया. उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया. जय बोले विष्णु भगवान की जय. सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन. दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक इन विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर. एंड ही वेंट एंड द टाइम द वृंदा सो द विष्णु, विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो. He faint. He lost there. She was so beautiful. And that sort of beauty, the Vishnu that did not tolerate. And he faint there. And Brinda surprised. Who is this? If this is my husband, he cannot be faint. He should not be unconscious. My husband is used to. And then before coming Brinda, before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So, and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived. I'm very tired with the Mahadev fight. Can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here. I'll offer you my lord. I'm waiting for you. You must be tired. I'll give some good massage. Come here. And she gave good fruits and everything. And she did the arati for her husband. And everything done. And that Vishnu did his notorious things. He performs that. And the Brinda, overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma. Finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev. And Vishnu is in Raslila with Brinda. In the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu sent message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came.
the big sound, massive sound came, and that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house, and that was his pati, and she saw his husband is dying there, and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy, and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only she, the Vishnu need to remain as like the Pasan, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted. You don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda curse, you are like the tree, like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth so that you cannot move anywhere else because you're disguised and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. तो फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्तानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्तानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया उसके बाद में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि ये विष्णु छलकारी तो जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी, कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झार होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग्स देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन अ स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन, एंड दैट्स व्हाई इन प्रेयर everywhere we use the kush grass. As we mentioned earlier session is kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly she calls the grass bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isliye is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur kya hai ki hum जो पीपल को रुख, सालिग्राम को, तुलसी को, कुशग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी बिस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसलिए कुशग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा. तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष, मोक्ष के लिए आ गए. एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी, पीपल, सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated way under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because the course of the Brinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people.

0: people, tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा, सर्वाधिक लोकप्रिय, जनहितकारी, सर्वकालिक, सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है, जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए, जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है। दैट पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इन हवन आल्सो, व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड, पीपल वुड्स, तुलसी वुड्स, कुश ग्रास, तुलसी वुड। सो व्हेन यू डेथ आल्सो इन सिमेट्री, इफ योर बॉडी इज सिमेट्री क्रिमेट विद द वुड ऑफ द पीपल, कुश, तुलसी, इट्स एज लाइक it will be purified your body and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai, ki thodi si bhi people ke ped lakdi aur tulasi ke lakdi saath mein rakhlo aur chita mein koi bhi, kisi ka bhi chita, पीपल का लकड़ी से, तुलसी का लकड़ी से, उसमें कुशकाश रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है। तो वो तो स्पिरिचुअली है, इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपका विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है। इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए समिदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड। सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और बाइजल ट्री, द तुलसी के नजदीक जाके चेक करें, सो यू विल गेट द हाई टेम्परेचर, हाई लेवल। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज तुलसी इज ब्यूटीफुल एंड देन पीपल इज ब्यूटीफुल। सो इट्स एज नो मैटर व्हाट एवर स्टोरी इज कनेक्टेड, बट दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स। सो मेडिटेटिंग अंडर द बनियन ट्री एंड ब्रिंगिंग द कुश ग्रास इन योर फ्लावर पॉट एंड प्लांटिंग द तुलसी कुश ग्रास इज वंडरफुल। That's why our saint and Rishi Munis, they ate that every prayer, you need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalasa also, that we put that, if you see that in the kalasa, there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav, mango and peepal and aak and chaap, so tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan and Australia and some other country, Canada, nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel the tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye peepal ke rukh mein dhyan karne se, peepal ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se, swas prashwasan mein aashwasan to yahi hai. और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया। कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में ही उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ। तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह पीपल शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है। इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning, the great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And you will go continuously. We have got, we finished many chapters today, so which is important also. We will not have time some other time to read in detail. There is a long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
2: भगवान की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की जय, श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय,
2: विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर।

0: Bombole, Sri Sri Dipnara, Bhagwan ki jai, Sri Sri Deva Purisha Mahadeva ki jai, Sri Sri Madhav Krishna Bhagwan ki jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwaranandji Guru Deva ki jai.
1: Jai Bole Bhole Baba ki. So in Shiva Puran, whatever talks, the Sustani Puran also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in the sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant, the change your vision, visuality. To Shiv Puran hamare liye aur sare vedadi ved kya karta hai ki hamare liye jivan kaisa saral banana hai और शिवजी की तरह कैसा रहना है. और शिवजी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बनके, कभी विष्णु बनके और कभी शिव बनके मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ. तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है. और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा, वो हो ही नहीं सकता. ब्रह्म एक ही है. तो इसलिए ब्रह्म एक है. तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है. वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है. सारे शास्त्रों, ऋषि मुनि, संतगण, महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए. फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि

इस कार्य बिगाड़ देता है। संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है, तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीड हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती, इजन इट। सो हनुमान इज ए भक्त ऑफ राम, वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती। बट इन सिमिलरली अर्जुन ऑल्सो द वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड भक्त ऑल्सो द कृष्ण। सो वाई वी कैनॉट सेलिब्रेट अर्जुन जयंती, बिकॉज हनुमान इज अ डिवोटेड पर्सन, ही नेवर डाउट, ही नेवर डाउट। सो ही ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, देर वॉज नो डाउट फॉर हिम, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, देर इज ऑलवेज ही बिलीव एंड ट्रस्ट। So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee, but he always doubt. He's asking, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I'm in confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha ishyami ma sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 adhyay ke 66 shlok mein jo likha hai wo bhi kya hai ki sarva dharman matlab ki koi bhi cheez aapka जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा। इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज, इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू विल गो, यू विल क्रॉस द रिवर। इफ यू डाउट देन इट विल नॉट बी, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इंक्रीज फेथ ऑल्सो। And for the faith, many stories comes, many things comes. So that's why there is theories. One is you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, Yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means Yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Sarvak's theory is that said. But in spirituality, it says like, there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from the Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron, and electron, they merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be seized. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now, it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rupta Samhita Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, aaj ke liye aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein pehle se abhi tak kya hua ki Parvati ji ka devotion to humne sun liya tha. Aise karke Jalandhar
जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया। पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया। इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है। आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड़ दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था। तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा। जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे। इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के। अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया, तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा। आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है। ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए। शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

शांति शांति शांतिर्भवतु। अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ब्लेसेड सेल

0: नारायण। हम सब दास प्रभु शरण परायण। सिक्स सो
1: कंटिन्यू
0: फाइव टाइम्स मोर
1: ešte 5 krát.

दीपनम सजते सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम्।

0: शिकारथीना प्राणी सब कुछ देख कर रोए थे, दे आर जेलस. सो वन मैन केम एंड सेड, आस्क हाउ आर यू. ही सेड आई एम ओके बट आई हैव वन बिग प्रॉब्लम, आई एम अनहैप्पी. सो व्हाई? बिकॉज माय नेबर इज सो हैप्पी एंड हैव एवरीथिंग. सो ही इज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हिज नेबर इज हैप्पी. There are people like this. That's called naidi. What is naidi? The envy.
1: Jealous.
0: Purusharat hina prani sab kuch dekh kar roi. Usse kuch bhi nahi milta. They don't get anything. Milega bhi to dega khoi. In case of case, if they get something, they will lose it that also. Purusharat hina prani सब कुछ देख कर रोई. पुरुषार्थ नाम, पुरुष नाम पुरुषार्थ का, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पुरुषा, डजंट मैटर इज मेल और फीमेल ह्यूमन. पुरुष नाम पुरुषार्थ का पुरुषार्थ करने से सिद्ध हुई. जो है देव के भरोसे वृथा जन्म गमाए. देर आर सम पीपुल, गॉड विल गिव मी एवरीथिंग एंड यू गो एंड बेक पूजा हियर, यू गो पूजा, गॉड विल गिव एवरीथिंग. व्हाट विल गॉड गिव एवरीथिंग? जो है देव के भरोसे वृथा जन्म गमाई, दे विल लूज देयर चांस. देव नाम है पुरुषार्थ का. सो गॉडेस मीन्स द पुरुषार्थ, द वर्क, गुड वर्क, पॉजिटिव वर्क करने से सिद्ध होई. इफ यू विल वर्क देन यू विल गेट इट. सो दैट इज तुलसी ब्यूटिफुल भजन ऑफ द अच्छो राम जी, ब्यूटिफुल भजन. देयरफॉर गॉडेज आर दे हु वर्क गुड, ही डिड गुड टू एवरीवन, हर्ट नो वन, इंस्पायर्ड एवरीवन, lead everyone in their spiritual path, not misguide them from the path, not create jealous or doubts, then you go to the rakshasa in the lower lokas. Deva. And this devata said, finally, let me come please to the human life that I can again this practice and get the mokshas. So, finally, there will be then Mahapralaya. But not maybe end of the Kali Yuga, no. We don't know when. There are many, many Satyugas. And many times the Shiva himself came. Which Shiva are you telling? The king of the Himalaya, Hemraja, or the Shiva? The king of the entire Himalaya range and this all, which was also more than half the India, north side, the China, this all, that was the great ruler, the kingdom. And his seat was in Himalaya and Kailash. And Parvati also Hemraj, the king's daughter, Ganga and Parvati. But Swayambhu was different. Swayambhu was ruling from the Kailash mount. And they, Hemraja was the whole ruling there. So this is another story we are going there. When Mahapralaya is that, it means the entire earth will be destroyed. That time before this destruction comes, all bhaktas will automatically will be rescued, brought in the Brahmaloka, in the Shiva consciousness, in the divine light, called Shiva Jyoti. Shiva Jyoti, yes. That will flow into the that divine river called Yamuna, Ganga, Narmada, Saraswati, Ganga, Gita, Chagayatri, Sita.

सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, माता पिता गुरुदेव

0: தொடம். மேடம் பப்பிஷோ யா மே மாரி மாஸ்க் நிக்கல் நிக்கால் தோ
1: विश्वमादेव की जय।
0: थोड़ा दूर
2: है। सम्राट सतगुरु स्वामी
1: महेश्वर नंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
2: विदाउट गुरु वी कैन नॉट नो गुरु।

0: पूज्यपाद अनंत शिव जय।
1: देव पुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की